जो जो लोपा थाउ नेपाल सम्बन्धिन्छ सौ पी खुद बछला गा द्वादशी थो रेडियो नेपाल ख अन्य नादी सिरी विपाके नेपाल भाषा या समाचार प्रतिपक्षी तेगु विरोध या हुने मिग डिगु प्रतिनिधि सभा बैठक थाउँ सुथेसिया चिन्छता इलेचोनीगु गोसादु थाउँ या बैठक के न सरकार या नीति व ज्या सदस्या सल या निरन्तरता काइगु जुगु दुसा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सदनीय मङ्का बैठक के सोमबार सरकार या नीति व ज्या जो बुना निङ्की गु ज्यासदु सदनया मिगया बैठके नियमित ज्यातलखे द्वाहे मवासे दिगु ख सदनया मिगया सम्भावित कार्यसूची कथ नीति व ज्यासुयाता निर्णयार्थ न्यवैगु ज्यासदुगु खस न्यानाचङको सदनीय अधिवेशन आर्थिक न 2083-84 बजेट नापा न्यवै ततङ्गु ख अथेया नथयानी हामी गया बैठके प्रधानमन्त्री सहायता थास अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले सरकार या वैगो आर्थिक दया नीति व ज्याजो दथिया सहल उलेजेयाना प्रस्ताव न्यवया दि सात प्रतिपछि दल या सांसद पिस प्रधानमन्त्री सहाया बोतिया माग यासे पङ्ग थङ्गु ख पङ्गया दथिया सभामुख अर्याल नापा नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलीय नेता भीष्मराज आङदेम्बे नीति व ज्याजो दथिया सहल सम् प्रधानमन्त्री सहाया बोती मागु अनिवार्य जुइगु कना दिगु ख अथियाना नेकपा एमाले या नेता पद्मा अर्याला नीति व ज्यासुया मु भाला प्रधानमन्त्री हेजुइगु संसद या संसद लुङ्गु विशेष लिस बी मागु भाला न प्रधानमन्त्री या हेजुइगु कनादिगु ख नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल प्रधानमन्त्री सहाया बोतिया विशेष आजक मुजुसे न्याद तकया कार्यकाल न्याङ्क नियमावली या धारा 38 केना प्रधानमन्त्री या स संसद न्याने मखनीको खला धका निहसतया दिल अधियना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दल या नेता ज्ञान बहादुर साई नीति व जसदतिया सहल न्यानेगु व लिस बी मागु दासे प्रधानमन्त्री सहाया बोती अनिवार्य जुइगु कना दिल अथियाना सत्तापक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्ला कोटिङ प्रधानमन्त्री हे नीति व ज्याचो या सहल असम बुटिका मागु कानुनी बाध्यता मुदुगु कना दिगु दुसा श्रम संस्कृति पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री शाह थप्न हे हगु नीति व ज्याजो दथिया सहल असम बोती मकागु धासे बैठक सम् पिहा झागु ख सभाया बैठके मिग सभामुख डोल प्रसाद अर्याला एमालिया संसदीय दलया नेता रामबहादुर थापाया मङ्गलबार सभाया बैठके बियादिगु नोचु संसदीय रेकर्डसँग चिकेता उजम बियादिगु खसा ठाउँ हान संसदीय बैठक 11 बजे निसिन्चोनीको गोसा कोछिना त अगुदु राष्ट्रिय सभा मिगा बैठकके आर्थिक दल 2083-84 नीति सरकारी नीति व ज्याजो दथिया सहल उले जाय अगुदु बैठकके प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह या थासा अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले राष्ट्रपति या थासा सङ्घीय संसदीय मङ्का बैठकके ह वैगु आर्थिक दल 2083-84 नीति सरकारी नीति व ज्याजो दथि सहल उले जाय यामा धेगु प्रस्ताव न्यवया दि व सहल निहागु ख बैठके वैगु आर्थिक दया नीति व ज्याजो दथिया सहल बोती कापी सांसद तेस नीति व ज्याजो वास्तविक शान्ति त राहत बी मफिया चुङ्गु कनादिगु दु सांसद पिस नीति व ज्याजो मनुते के आशा व भलसा मुवाके मफुगु प्राकृतिक ग्यास उत्पादन व थुकिया उचित छेलाबुला जलविद्युत आयोजना तेगु प्राथमिकीकरण या विषयता

सांसद सा सुकुम्बासी तेगु मा कथया व्यवस्थापन मया से सरकार छे बु बिहीन याना बिगु नेत से सुकुम्बासी तेता मा कथया नेगु तोनेगु चोनेगु व लजकया व्यवस्थापन याना बीत सरकार ध्यान को सागु ख सरकार संघीय मन्त्रालय लिया निगु स कोकाया झिन्च्यागु यागु कोचिगुदु मन्त्री परिषद मिगो चङ्गु बैठक नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2083 स्वीकृत मन्त्रालय लिया मोयागु कोचिगु ख प्रशासनिक सुधार अमित व्ययता कायम यागु मजी मगागु झना चङ्गु खर्च कटौती यागु कार्य सम्पादन या त अञ्चलिचो लाकिगु यखन यागु मुख्य आजु नापा संघीय मन्त्रालय लिया झिन्च्यागु कायम यानागु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय जानकारी बिगु ख सरकार अर्थ गृह परराष्ट्र रक्षा व कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय या त थाते त अगुदु अध्ययन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति संस्कृति पर्यटन व नागरिक उड्डयन व ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय न थाते त अगुदु अध्ययन सरकार प्रविधि व आविष्कार या त थ्या ब्युसे साविक या शिक्षा मन्त्रालय सँग विज्ञान प्रविधि लिकया नुगु तनेगु याना नव प्रवर्तन नापाया ज्या स्वयगु याना ब्याग्ला विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन मन्त्रालय निश्वनेगु कोचिगु ख अथेयाना मन्त्रालय ज्या भाला हिलाबुला या से समान प्रकृति मन्त्रालय त एकीकृत यागुदु गुकिया कथा आव निशे शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय संचार मन्त्रालय युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय व भूमि सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय जुइगुजुगुदु अथियाना महिला बाल बालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय पूर्वाधार विकास मन्त्रालय व कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय देखिगुजुगुदु साविक या संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय याना वयाचङको सूचना प्रविधि नापाया ज्यायाता धासा आवनिसे प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद कार्यालय स्वागु प्रधानमन्त्री प्रेस विज्ञ दहाल जानकारी बिहादिगु ख मन्त्री परिषद बैठक विद्युतीय सुशासन आयोग निशोनेता व सञ्चालन आदेश 2079 या संशोधन स्वीकृति आयोगको कोचिगु संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सेना जानकारी बियादिगुदु बैठकमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन समिति या दुजस प्रतिनिधि सभा सदस्य सुशीला खड्का योगेश गौचन थकाली या त मनोनयन यागु कोचिगुदु अध्ययन बैठकमा भूमि नापाया नि छकगु संशोधन नियम त 2083 स्वीकृति आयोगु न मन्त्री परिषद बैठक कोचिगु संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा जानकारी बियादिगु ख सम्भावित खुशी बा व सडक देखेगु ज्याया हुने काभ्रे पलाञ्चोक सिन्धुली दुगु बिपी राजमार्ग हुम्ला हिल्स सिमकोट सडक खण्डे सवारी वैगु वनिगु तिनाबिगुदु प्रहरी प्रधान कार्यालय मिग छगु सूचना पिथासे काभ्रे पलाञ्चोक या खुर्कोट नेपाल थोक कटुन्जे बेसी जुसे सिन्धुली न्यायगु बिपी राजमार्ग आपला जोखिम जुगु लिता ध्याने तसे सवारी वे वनिगुली पङ्ग थङ्गु जानकारी बिगु ख नेपाल पर्यटन बोर्ड भारतीय पर्यटक दति नेपाल सरकार या नुगु प्रतिबन्ध छेलागु धैगु मामदुगु तथ्यहीन समाचार या त कया ध्यान कोसागु धागुदु पर्यटन बोर्ड अमिग प्रेस विज्ञप्ति पिथासे छु संचार माध्यम व अनलाइन प्लेटफर्म पाके भारतीय पर्यटक या त नेपाल दुहा वेकेता अनिवार्य परिचय पत्र छगु नेपालले चुनाव वया चोङगु यी सुइनु सीमित यागु व यी मगासा सवारी जोलना पाँच जफत याइगु थे जागु थल पूर्ण कथा मा मधुगु हिना हुइना बुना लिदंसा सुचौ बोलङ्कु धका विज्ञप्ति पाखेन जानकारी बिगु ख वङ्गु नि पे घौले निदो सोस खुइ न्यामा सवारी चालक या सवारी नियम उल्लङ्घन या कारवाही खे कारवाही आगुदु थुकेसा राज्य कोसे नि छगुलाख नहे नहे दो न्यास पेतका राजस्व दाखिला जुगुदु ये उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय या कथा मादक पदार्थ तोना तोपी चेचामा नियम अखर राइड सेयरिङ यापी निसव ङे च्यामा सङ्केत मता उल्लङ्घनकर्ता सचिव ङे खुमा आपला तस्क सवारी जोल चले यापी सचिव ने पेमासित कारवाही यानागु जानकारी बिगु ख सरकार निजामती कर्मचारी यता राजनीति खेप बोती कासा सेवा सचिकेगु ख्यासो बिगुदु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हिगो छगु सूचना पिथसे निजामती कर्मचारी यता अनुशासन व आचरण नपाए अवस्था पूर्ण कथा पालना यता उज बिगु ख सुचासा नेपाल या संविधान

0: जामती सेवा ऐन कथा नि जामती सेवा राजनैतिक कथा तथस्थ निष्पक्ष व उत्तरदाय जुई मागु नेथना त अगुदु केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रहरी पुचसँग सरकारी सम्पत्ति क्षति यागु दोपसा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्ड्या त सिन्धुलीसँग जोङ्गुदु निज पाखे स्मार्ट टेलिकम या पूर्ण सम्पत्ति दूर संचार पूर्वाधार दूर संचार प्रणाली हो दूर संचार सञ्जाल नेपाल दूर संचार प्राधिकरण नियन्त्रण कागु अवस्था उगु सम्पत्ति सरकारी हक छुट्याना लिलामी प्रक्रिया से लावागु दोपसौ निज यता जोनागु धागु दु ब्युरो प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठ या कथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डे लोन रिकभरी कमिटिया अध्यक्ष हैसियत उगु लिलामी प्रक्रिया के बोती कागु अनुसन्धान छ सिदुगु जानकारी बिगुदु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति वीरेन्द्रनगर या तत्कालीन सदस्य सचिव नापाङ यामा विरुद्ध विशेष अदालती मुद्दा दायर यागुदु सटर क्लब भाडा पाखे आमदामी कया मैङ दाखिला मयासे आमदामी ढेबा अनियमितता यागु दोपसा तत्कालीन सदस्य सचिव टिकाराम ढकाल विरुद्ध खुइ पेङ्गु लाख नि च्यादो शिवे उप विगो मागदाबी यासे मुद्दा दायर यागु आयोगका प्रवक्ता सुशील न्योपाने जानकारी बियादिगु खसा अथेन आयोगका तत्कालीन सदस्य सचिव नरहरि तिवारी विरुद्ध छगु करोड पेङ्गु लाख ने छदो व गेहेन्द्र बहादुर डाँगी विरुद्ध ने निगु लाख ने च्यादो शिव उप विगो दाबी यासे मुद्दा दायर यागु ख अथेन आयोग तत्कालीन लेखा अधिकृत हरिबहादुर छेत्री या कला सीमा कुमारी चन्द छेत्री विरुद्ध निगु करोड गुइगु लाख गुइ खुदो हो तत्कालीन सहलेखापाल खड्ग बहादुर राणा विरुद्ध निगु करोड गुइ पेङ्गु लाख ने च्यादो हजार ने च्यादो शिवे उप बिगो माग्दा बियासे मुद्दा दारियानाको प्रवक्ता निपाने जानकारी बियादिल धाको फेया हुने सीमा कोदया कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइन कथा दुगु सचिव सुई निगु केबी प्रसारण लाइन या निगु टावर पूर्ण कथा स्याङ्गु दु ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ या प्रसारण टावर कोदे धुङ्कानी मिग सेना चङ्गु टावर या त भिङ्केगु झाँका या त दुवाले त प्रक्रिया न्योजाके त स्वपु दुगु निकाय त उज बिहादिगु दु आदेश पिन्या बुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प औपचारिक भ्रमण या झोले चीन राजधानी बेजिङ थेङ्का दिगु दु चीन या उच्च अधिकारी पिस राष्ट्रपति ट्रम्प या त बेजिङ झझाक लसकुस यागु ख राष्ट्रपति ट्रम्प मिघे चिनिया समकक्षी सी चिङफिङ नापा निगु पक्षीय वार्ता नापा व्याख्या दिगु दु बेजिङ या ग्रेट हल अफ द पिपल ए जुगु निगु महाशक्ति प्रमुख तेगु नाप्लाई ज्या फुकन ज्या पुङकागु चिनिया विदेश मन्त्रालय थागु दु औपचारिक नाप्लाई ज्या लिपा राष्ट्रपति सी समकक्षी ट्रम्प या हना या त राजकीय भैया कथा गोसा गोया नापान्दी गुख निगु दे दतिया नाप्लाई ज्या मुखियाना अमेरिकाले पाङ्गु इले छगु चिन उकिया विरुद्ध छगु कर प्रविधि दति झेन्डियम बला इरान युद्ध ताइवान या विषय नापा मुद्दा खे सल जुइ गु धागु दु यको उद्योगी व्यवसायी व राष्ट्रपति ट्रम्प या भ्रमण दलले दुसा टेस्ला या एलन मक्स एनभिडिया या जेन्सेन हुवाङ नापा या प्रतिष्ठित लोकम भापी व्यवसाय त जोना बेजिङ वने ह पत्रकार ते गुखलाबला राष्ट्रपति ट्रम्प चीन या त अमेरिकी उद्योग या नीति खुल्ला जुइ त इनापियाको विशेष थगु मु मुद्दा मध्य छगु जुगु जानकारी बियादिगु खसा राष्ट्रपति ट्रम्प या थ्यो भ्रम नापा मार्चे कोचिना तगु खसा खसा न इरान युद्ध हुने लिच्छागु ख थ्याँ राष्ट्रपति ट्रम्प सन् 2017 के चीन भ्रमण याना दिगु ख आ मौसम या जानकारी थौ कोशी प्रदेश नपा बागमती गण्डकी प्रदेश या हिमालय पहाडी लगाया छुन थासे ओ लिया दुगु हिमालय पहाडी लगाया युग मोह थासे वो मधेश बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश या तराई लगाया छ गुनिगु थासे वा उइगु सम्भावना कुबीगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापु दु वङ्गुनी पेगौले ये सोनी गले या क्वाज निखुगु निसी निगु डिग्री सेल्सियस जति चोनिगु धुकुमा यागु दुसा थौनिने ये सोनिक या क्वाज निखुगु निसे निच्यागु डिग्री सेल्सियस जति चोनिगु धुकुमा दु थौ सुथे ये सोनिगले या त इ जुया झिगुमिनेटे लुया वगु सूर्य शनिल खुता इ जुया ङे छगुमिनेटे बि रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुन झिताइले नेपाली भाषा समाचार निनादिस शुभ
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार

अब प्रस्तुत गर्दैछौ आज रेडियो नेपाल बागमती प्रादेशिक प्रसारणमा साँझ 6 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू बारे जानकारी।

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास ठीक विजय झा से सुनल जा मैथिली भाषा में समाचार। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक में सरकार के आवे वाला आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम में अपन संशोधन प्रस्तुत करित सांसद सब कृषि के व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवर्धन, रोजगारी आ समृद्धि के विषय में समावेश करबाक लेल आग्रह कयलनि अछि। नीति तथा कार्यक्रम में 35 गोटे सदस्य संशोधन के प्रस्ताव कयलनि अछि। बैठक में सांसद सोहांग नेवांग नीति तथा कार्यक्रम में उत्साह आ भरोसा जगाबे वाला प्रस्ताव में अपन समर्थन ढल बतबैत संविधान संशोधन जेहन राष्ट्रीय भावना के जोड़बाक चाही बतौलनि। सांसद क्षितिज थेवे सुशासन के विषय में नीति तथा कार्यक्रम में राखब सकारात्मक रहल बावजूदो पर्यटन प्रवर्धन में प्रभावकारी कार्यक्रम समावेश करबाक लेल आग्रह कयलनि। सांसद गणेश सिंह ठगुन्ना नीति तथा कार्यक्रम में संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत करत कालापानी लिपुलेख ओलंपिया धुरा के भूमि के वास्तविक अर्थ में नेपाल के अधीन में आना भारत संग कूटनीतिक पहल करबाक विषय नीति तथा कार्यक्रम में समावेश नहीं होब दुख भेल टिप्पणी कयलनि। सांसद डॉक्टर अर्जुन कुमार कार्की आर्थिक कूटनीति के महत्व द कऽ वैदेशिक सहयोग आ सहकारी के बढ़ाकर देश के विकासशील राष्ट्र के रूप में स्तरोन्नति करबाक कार्यक्रम समावेश करबाक लेल आग्रह कयलनि। सांसद युवराज दुलाल वन क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पादकत्व वृद्धि में उपयोग करबाक प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रम में नहीं आयल बतौलनि। दोसर सांसद ऐन बहादुर महर नीति तथा कार्यक्रम शब्द सबके स्तुति अधिक भेल बावजूदो देश के रूपांतरण के विषय में नहीं रहल टिप्पणी कयलनि। सांसद पद्मा कुमारी अर्याल बीतल समय सरकार के सकारात्मक कार्यक्रम के निरंतरता देवाक प्रयास भेल देखल गेल बावजूदो ई पर्याप्त नहीं भेल बतौलनि। सांसद कृपाराज राणा सुकुमवासी के न्याय भेटबाक चाही विषय आ कृषि के व्यवसायीकरण करबाक चाही विषय नीति तथा कार्यक्रम में थपय लेल प्रस्ताव कयलनि। सांसद भूमिका सुब्बा लिंबू आदिवासी जनजाति के ज्ञान परंपरा आ संस्कृति के विकास के मूल प्रवाह में समेटय लेल आग्रह कयलनि। सांसद यज्ञ बहादुर बुगटी नीति तथा कार्यक्रम में नयापन किछु नहीं रहल आ युवा सब के अपेक्षा बमोजिम नहीं भेल टिप्पणी कयलनि। सांसद गंगा देवी श्रेष्ठ प्रदूषण बढ़ावय वाला पुरान सवारी साधन के हटेबाक विषय समावेश करबाक मांग कयलनि। सांसद डॉक्टर पुष्पराज करील राज्य व्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन आ योजनाबद्ध आर्थिक विकास के तालमेल नहीं भेल बतबैत राष्ट्र सेवक कर्मचारी के तलब बढ़ावा लेल सुझाव देलनि। सांसद यशोदा कुमारी बराल कर्णाली के सब जिला में पीबय वाला पानी स्वास्थ्य शिक्षा में सहज पहुँच अनिवार्य करबाक लेल यही विषय के प्राथमिकता में राखय लेल आग्रह कयलनि। सांसद चुका भद्र हमाल जवाबदेहिता वृद्धि आ परिणाम देखाय सन नीति तथा कार्यक्रम के ठीक करय लेल सुझाव देलनि। सांसद कुलभक्त साक्य श्रमिक वर्ग के सामूहिक सौदाबाजी कर नहीं पावे के हक के वंचित करबाक नहीं चाही बतौलनि। सांसद प्रेमेश कुमार हमाल संविधान में रहल समाजवादोन्मुख आर्थिक व्यवस्था सामाजिक न्याय आ रूपांतरण के विषय में स्पष्ट करबाक लेल आवश्यक रहल बतौलनि। सांसद मातृका प्रसाद यादव रुग्ण उद्योग सब यथाशीघ्र संचालन के व्यवस्था हेबाक चाही पर जोर देलनि। दोसर सांसद परशुराम तमांग कमाक खाय वाला श्रमजीवी वर्ग आ उत्पीड़न वर्ग के लेल अर्थ राजनीतिक समस्या के समाधान नीति तथा कार्यक्रम में नहीं भेल आरोप लगौलनि। सांसद बलावती शर्मा 20 वर्ष से ऊपर के महिला के बच्चेदानी के समस्या स्तन कैंसर रोग के निःशुल्क उपचार के व्यवस्था करबाक लेल मांग कयलनि। सांसद पार्वती बिक दलित आ दुर्गम क्षेत्र के महिला के हक अधिकार में के सवाल में प्राथमिकता देबाक लेल आग्रह कयलनि। सांसद निराशा चौधरी ठगौरा कृषि क्षेत्र के राहत देबा लेल आ बाजार प्रवर्धन करबाक लेल आग्रह कयलनि। राष्ट्रसभा में आर्थिक वर्ष 2083-84 के लेल नेपाल सरकार के नीति तथा कार्यक्रम पर विचार विमर्श समाप्त भेल अछि। सरकार के नीति तथा कार्यक्रम पर सांसद सब उठौने प्रश्न के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह जवाब दिलाक बाद सभा में निर्णयात प्रस्तुत करबाक कार्यसूची रहल बावजूदो अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल 15 मिनट के लिए स्थगित कयने बैठक अखनो शुरू होबय नहीं सकल अछि। यद्यपि बैठक में सरकार के नीति तथा कार्यक्रम पर विचार विमर्श में भाग लैत सांसद सब संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार बीच के संबंध तथा समन्वय के आर सुदृढ़ बनेबाक लेल प्रभावकारी व्यवस्था MCC तथा BRI जेहन अंतर्राष्ट्रीय सहकारी के विषय के नीति तथा कार्यक्रम में स्पष्ट रूप में समेटल जवाक चाही पर जोर दिलनि। बैठक में सांसद सब किसान आत्मनिर्भरता तथा उत्पादन वृद्धि युवा रोजगारी तथा राष्ट्रीय गौरव की आयोजना के विकासक लेल लगानी सुनिश्चित करबाक ठोस कार्यक्रम नहीं समेटल गेल कहैत निमुखा जनता के सुरक्षा सुरक्षित करबाक संगे शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त लगानी करबाक चाही विचार व्यक्त कयलनि।
सभामुख डोल प्रसाद आर्याल प्रतिनिधि सभा के नवनियुक्त सचिव प्रकाश अधिकारी के पद तथा गोपनीयताक शपथ ग्रहण करौलनि। संसद सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में सभामुख आर्याल नवनियुक्त हुनका शपथ ग्रहण करौलनि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सभामुख आर्याल के सिफारिश में श्री अधिकारी के बुध दिन प्रतिनिधि सभा के सचिव में नियुक्त कयलनि। सचिव अधिकारी आईएएस कार्यभार संभालने छथि। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल के अध्यक्षता में बुधदिन मंत्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति के बैठक सम्पन्न भेल। एहि अवसर पर मंत्री खनाल प्रभावकारी कार्य संपादन में जोर दैत समस्या समाधान में सबके सहयोग अपरिहार्य रहल बतौलनि। शीघ्र सेवा प्रवाह समस्या समाधान में तत्परता के साथ प्रस्तुत होब ओ निर्देशन सेहो देलनि। एहि निमित्त अपना दिस सँ सहयोग होब वला प्रतिबद्धता मंत्री खनाल व्यक्त कयने मंत्रालय जनौलक अछि। बैठक में आर्थिक वर्ष 2082-83 सँ अखन धरि के कार्य संपादन के समीक्षा तथा मूल्यांकन भेल छल। संगे मंत्रालयगत कार्यान्वयन प्रक्रिया में देखल गेल अवरोध तथा चुनौती समाधान करबाक विषय में विस्तृत विचार विमर्श कयल गेल छल। बैठक में राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर गुड़ाकर भट्ट सहित मंत्रालय के उच्च अधिकारी सब तथा संबंधित निकाय के प्रतिनिधि सब के उपस्थिति रहल छल। शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के उपकुलपति आ रजिस्ट्रार छनौट के लिए 3 सदस्य सिफारिश समिति गठन भेल। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सस्मित पोखरियल के अध्यक्षता में बुध दिन बैसल विश्वविद्यालय सभा बैठक सँ प्राध्यापक डॉक्टर जयराज अवस्थी के संयोजकत्व में समिति गठन करबाक निर्णय कयलक। समिति के सदस्य में प्राध्यापक डॉक्टर लोचना श्रेष्ठ आ प्राध्यापक डॉक्टर दिनेश लमसाल रहल छथि। प्राध्यापक डॉक्टर अवस्थी सूर्यपश्चिम विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति सेहो छथि। विश्वविद्यालय के हिसाबे सीमित शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विश्वविद्यालय 82 बमोजिम गठन कयल गेल अछि। बैठक सँ विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करैत 6 गोटे विश्वविद्यालय सभा सदस्य सेहो मनोनयन कयलक अछि। विज्ञान तथा प्रविधि, शिक्षा, कानून व्यवस्थापन, मानव शास्त्र तथा समाजशास्त्र क्षेत्र सँ 2 महिला सहित विशिष्ट व्यक्ति सब सीनेट में समावेश कयल गेल जनौलक अछि। एहि बीच बैठक सँ एहिसँ पहिने विश्वविद्यालय सभा में रहि कऽ योगदान पहुँचौने सब सीनेटर प्रति धन्यवाद ज्ञापन कयलक अछि। मध्य प्रदेश सभा के सभामुख राम आशीष यादव कुपोषण न्यूनीकरण तथा मातृ शिशु स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रदेश सरकार स्थानीयतः सरकार भेल निकाय बीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहल बतौलन अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय द्वारा लालगढ़ में आयोजित 3 दिनी प्रदेश स्तरीय पोषण नीति तथा संवाद शिखर सम्मेलन के समापन करैत ओ पोषण केवल स्वास्थ्य क्षेत्र संग मात्र सीमित नहीं भ शिक्षा, कृषि, खाने पानी, सर सफाई तथा सामाजिक चेतना संग जुड़ल गेल विषय रहल बतौलन। ओ मध्य प्रदेश में अखनो धियापुता तथा महिला के कुपोषण के समस्या चुनौती के रूप रहल कहित अय के घटाव दीर्घकालीन नीति व्यवहारिक योजना तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भेल पर ओ जोर दलन। मध्य प्रदेश सभा के महिला बाल बालिका तथा सामाजिक न्याय समिति के सभापति रूपा कुमार यादव महिला के स्वास्थ्य बाल अधिकार तथा पोषण सुरक्षा के प्राथमिकता में राखि कर नीति निर्माण करवाक चाही बतौलन। संभावित बाढ़ तथा सड़क निर्माण कार्य के कारण काभरे पलांचौक सिंधुली स्थित बीपी राजमार्ग हुमला के हिलसा सिमकोट सड़क खंड में सवारी आवागमन बंद कयल गेल अछि। प्रहरी प्रधान कार्यालय एक सूचना जारी करत काभरे पलांचौक के खुरकोट नेपाल थोक कटुन जे बेसी होत सिंधुली सँ चलवला बीपी राजमार्ग में संभावित बाढ़ के जोखिम के मद्देनजर करत सवारी संचालन में रोक लगाएल गेल जनौलक अछि। प्रहरी के हिसाबे बैसाख 21 गते साँझ 5 बजे सँ भिनसर पाँच बजे धरि एहि सड़क खंड में चलय वाला संपूर्ण सवारी साधन दोसर आदेश नहीं भेल धरि के लिए बंद कयल गेल अछि। एहिना हुमला के नामखा गांवपालिका वार्ड नंबर 2 चियादू क्षेत्र में सड़क विस्तार के काज भ रहल कारण हिलसा सिमकोट सड़क खंड में सेहो आवागमन बंद कयल गेल अछि। चियादूक होटल सँ च्याछड़ा धरि सड़क खनवा क्रम में ऊपर सँ पाथर आ माटि खसबाक जोखिम रहला सँ बैसाख 29 गते सँ जेठ 2 गते धरि एहि सड़क खंड में यातायात संचालन रोकल गेल प्रहरी जनौलक अछि। आ मौसम समाचार, अखन देश में पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली स्थानीय वायु तथा निचका वायुमंडल में रहल न्यूनचापीय क्षेत्र के प्रभाव कायम रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। महाशाखा के हिसाबे कोसी, मधेश, बागमती, गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश लगाए देश के हिमालय तथा पहाड़ी भाग में साधारणता बदली रहत त बाकी भाग में आंशिक बदली भेल अछि। कोसी आ बागमती प्रदेश के किछु तथा लुम्बिनी आ गंडकी प्रदेश के किछु स्थान में मध्यम वर्षा भ रहल अछि। एहिना आइ राति कोसी, मधेश, बागमती आ गंडकी प्रदेश लगाए देश के हिमालयी भाग में साधारणता बदली रहबाक तथा बाकी भाग में आंशिक बदली रहबाक जनायल गेल अछि। कोसी आ मध्य प्रदेश के किछु स्थान, बागमती आ गंडकी प्रदेश के हिमालय तथा पहाड़ी भाग तथा कर्णाली प्रदेश के हिमालयी भाग में 1-2 स्थान में मेघगर्जन तथा ठनका सहित मध्यम वर्षा तथा हिमपात भ सकबाक महाशाखा विभाग जनौलक अछि।
आब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आई चिनिया समकक्षी सी जिनफिङ सङ्घके वार्ता अत्यन्त सकारात्मक भेल बतौलनि अछि। भेटके अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङके सेप्टेम्बर 24 व्हाइट हाउस भ्रमणके लेल आमन्त्रण सेहो कयने छथि। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रतिनिधिमण्डलके सम्मानमे आयोजित रात्रिभोज समारोहमे राष्ट्रपति सी आ हुनक पत्नी पेङ ल्युआनके सम्बोधन करैत ट्रम्प कहलनि सेप्टेम्बर 24 व्हाइट हाउस भ्रमणके लेल चिनिया राष्ट्रपति सी आ प्रथम महिला पेङके निमन्त्रणा करब पाएब हमरा लेल गौरवके विषय अछि। एहि बीच चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीके महासचिव तथा राष्ट्रपति सी जिनफिङ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सङ्गके वार्ता पश्चात आयोजित रात्रिभोजके सम्बोधन करैत चीनके प्रगति अमेरिकाके पुनः महान बनाएब सकत से बतौलनि अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल भर्दिवाससँ सुनि रहल मैथिली भाषामे समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी आर्थिक वर्ष की नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रीय सभा से की गई पारित और प्रतिनिधि सभा में विचार विमर्श जारी। नए मंत्रालय लागू होने के साथ राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल द्वारा मंत्रियों के कार्य विभाजन में फेरबदल। इस वर्ष के बसंत पर्वतारोहण सत्र के लिए सगरमाथा आरोहण मार्ग खुला और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बीजिंग में वार्ता। बातचीत अत्यंत सकारात्मक रही, अमेरिकी राष्ट्रपति का कथन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा से नीति तथा कार्यक्रम पारित की गई है। इससे पहले राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम बागले ने नेपाल सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 की नीति तथा कार्यक्रम पर हुई चर्चा में उठे प्रश्नों का जवाब दिया है। नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा समाप्त होने के बाद जवाब देते हुए मंत्री बागले ने कहा कि अतीत में बने अर्थतंत्र के आधार पर समावेशी विकास के साथ साथ समग्र सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री वागले ने जानकारी दी कि सरकार 100 बिंदुओं वाले शासकीय सुधार कार्यों और सदन में आए सुझावों को आधार मानकर आगामी बजट प्रस्तुत करेंगे। सांसदों ने सुकुम्बासियों के अधिकारों का उचित व्यवस्थापन, अपांग तथा पिछड़े समुदायों के अधिकार संरक्षण, महंगाई नियंत्रण, सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण, सवारी साधनों की गुणवत्ता परीक्षण और नियमित निरीक्षण के लिए स्पष्ट योजना बनाने की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। प्रतिनिधि सभा में नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा में भाग लेते हुए संशोधनकर्ता सांसदों ने कहा कि नेपाल की भूमि कालापानी और लिपुलेख में अतिक्रमित हुई है, इसलिए नीति तथा कार्यक्रम में स्पष्ट दृष्टिकोण सहित धारणा आनी चाहिए। प्रतिनिधि सभा के सांसदों ने संविधान कार्यान्वयन, संघीयता सुदृढ़ीकरण और नागरिक मैत्री शासन को सरकार की प्राथमिकता बनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने सार्वजनिक सेवा प्रवाह में सुधार और सरलीकरण तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण को सरकार की प्राथमिकता बनाने की बात कही। सांसदों ने नीति तथा कार्यक्रम में शामिल डिजिटल पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्योग के रूप में प्रवर्धन करने तथा आयोजना प्रमुखों को जिम्मेवार और उत्तरदायी बनाने जैसे विषयों को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति तथा कार्यक्रम क्षमता मूलक समाज निर्माण करते हुए समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र के विकास का विषय लाने में असफल रहा है। राजनीतिक वैचारिक रूप से स्पष्ट नीति कार्यक्रम नहीं आने से बात कहते हुए सांसदों ने कहा कि सरकार को अपना राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण संविधान की परिधि के भीतर रहकर स्पष्ट करना चाहिए। इससे पहले विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को सदन में उपस्थित होकर सांसदों द्वारा उठाए गए विषयों पर जवाब देने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक से आकस्मिक समय में नेपाली कांग्रेस के सचेतक निश्चल राय ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा में नहीं आए तो विरोध जारी रखा जाएगा। नेकपा एमाले के प्रमुख सचेतक एन बहादुर मगर ने प्रश्न किया कि सरकार संविधान में व्यवस्था गई है कि शासन प्रणाली का पालन कर रही है या किसी अन्य शासन व्यवस्था का। उन्होंने सरकार से संसद के प्रति उत्तरदायी बनने और सांसदों द्वारा उठाए गए विषयों का जवाब देने की मांग की। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की सचेतक खुशबू ओली ने कहा कि संसद में प्रधानमंत्री को खोजकर उनकी जवाबदेही की मांग की गई है। श्रम संस्कृति पार्टी के सांसद आर एन राय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की अवहेलना की है और संसद में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष दोनों की बात प्रधानमंत्री को सुननी और जवाब देनी चाहिए। इसी तरह आज की बैठक में सभामुख डीपी अर्याल ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद गणेश पराजुली द्वारा दिए गए दो वक्तव्यों को संसद के रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने मंत्रिपरिषद में फेरबदल और कार्य विभाजन किया है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्य द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति पौड़ेल ने नेपाल के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सिफारिश पर वर्तमान मंत्रिपरिषद में फेरबदल किया है। नए कार्य विभाजन के अनुसार प्रधानमंत्री शाह ने रक्षा, गृह तथा विज्ञान प्रविधि एवं नव प्रवर्तन मंत्रालय अपने पास रखा है। इसी प्रकार डॉक्टर डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, अर्थमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सुनिल लम्साल, पूर्वाधार विकास मन्त्री शोभिता गौतम, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री सीता बादी, महिला बाल बालिका लैंगिक एवं यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री प्रतिभा रावल, भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, इसी प्रकार निशा मेहता, स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता मन्त्री सस्मित पोखरेल, शिक्षा एवं खेलकूद मन्त्री खड्गराज पौडेल, संस्कृति पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा, संचार तथा सूचना मन्त्री गीता चौधरी, कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता कुमारी, उद्योग वाणिज्य एवं आपूर्ति मन्त्री रामजी यादव युवा श्रम एवं रोजगार मन्त्री बनाए गए हैं। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
1: हजुर दर्शन,
2: भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते बाबुजू।
2: नमस्ते, आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ बाबुजू।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् बाउजू।
4: ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
3: ए हो र,
1: एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसके सभापति गगन कुमार थापाले सरकारको संविधान, कानून और स्थापित प्रणाली के अनुसार चलाए जाने पर जोर दिया है। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति एवं प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा आज पोखरा में आयोजित प्रादेशिक स्तर की बैठक में सभापति थापा ने पार्टी की ओर से प्रदेश और स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी संभाल रहे प्रत्येक सदस्य एवं पदाधिकारी से अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाने का आग्रह किया। इस वर्ष के बसंत पर्वतारोहण सत्र के लिए सगरमाथा आरोहण मार्ग खोल दिया गया है। सगरमाथा बेस कैंप से शिखर तक रस्सियां लगाए जाने के बाद आरोहण मार्ग आधिकारिक रूप से खोल दिया गया है, ये जानकारी पर्यटन विभाग ने दी। विभाग ने बताया कि सगरमाथा, लोत्से और नुप्से पर्वतों के आरोहण मार्ग प्रबंधन के लिए सगरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समिति और नेपाल पर्वतारोहण संचालक संघ द्वारा लगाने का कार्य पूरा किए जाने के बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी सगरमाथा के बेस कैंप से शिखर तक का मार्ग खोल दिया गया है। युवा श्रम एवं रोजगार मंत्री रामजी यादव ने मंत्रालय के निकायों और विभागों से नागरिकों द्वारा आचार नमस्कार शुभ रात्रि।
6: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
7: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
6: *1415# डायल गर्नुहोस्।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
8: नागरिक लगानी कोषको नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी भई भविष्य सुरक्षित बनाओ। यस योजनामा न्यूनतम मासिक 500 रुपियाँ जम्मा गरेर सहभागी हुन सकिन्छ।
9: नागरिक लगानी कोष।
10: झण्डु आयुर्वेद।
11: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक पुतली सडक काठमाडौँ।
10: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
11: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
10: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
11: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
12: यही 2083 वैशाख 2 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म देश

0: जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है मंजिल, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इन पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है रेडियो नेपाल की प्रस्तुति और आप सबके प्यार व मिठास भरे हिंदी सदाबहार गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में, और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र
1: और मैं रमिता यादव,
0: और तकनीकी तौर पर हमारा साथ दे रहे हैं प्राविधिक मित्र पुष्प रत्न वज्राचार्य जी।
1: जी हाँ दोस्तों, मीडियम वेव 576, 648, 694, 792, 810 और 1143 किलो हर्ज के साथ साथ एफएम बैंड 98 और 103 मेगा हर्ज पर, साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से www.radionepal.gov.np, www.onlineradionepal.gov.np और www.psbnepal.gov.np पर एक साथ आप मधुरिमा कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं और इसे आप रेडियो नेपाल के मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं।
0: और इसके अलावा बहुत से मित्र मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज पर लाइव देख भी रहे हैं, तो जो नहीं देख पा रहे हैं और वो भी देखना चाहते हैं तो मधुरिमा हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, ताकि जैसे ही कार्यक्रम शुरू हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप भी लाइव कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएं और अपने खूबसूरत कमेंट्स के जरिए हमारे साथ गुफ्तगू भी कर पाएं।
1: जी,
0: और साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि बहुत से नए मित्र रेडियो नेपाल के साथ जुड़ें और मधुरिमा के इस बड़े परिवार का हिस्सा बने।
1: जी हाँ दोस्तों, हर गुरुवार रात 10 बजे के हिंदी समाचार के तुरंत बाद करीब 50 मिनटों के इस कार्यक्रम में आज बारी है आपके प्यार भरे फेसबुक कमेंट्स और ईमेल्स की।
0: जी, और जी
1: ये पहला पत्र है, आर्यस विजय कुमार जी हैं आंध्र प्रदेश भारत से, लिख रहे हैं रेडियो नेपाल से प्रसारित होने वाले साप्ताहिक हिंदी कार्यक्रम मधुरिमा के प्रस्तुतकर्ता मुकेश जी, रमिता जी, सीमा जी तथा कार्यक्रम संचालक पुष्प रत्न जी को मेरा सादर नमन कहा है इन्होंने।
0: नमस्कार, नमस्कार।
1: और यहाँ पर तो गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है उन्होंने लिखा है, लेकिन दूसरी तरफ इस भीषण गर्मी में ही फलों का राजा आम भी अपना विराट दर्शन दे रहा है।
0: हाँ।
1: और कितने अच्छे अच्छे प्यारे शब्द इन्होंने लिखे हैं। और बाजार में विभिन्न प्रकार के कच्चे आम तथा आम के फलों के विभिन्न प्रकार उपलब्ध हैं। घर के बुजुर्ग लोग आम के आचार बनाने में व्यस्त हैं और परिवार के बाकी लोग आम को खाने में व्यस्त हैं। क्या बात है,
0: मेरा फेवरेट फल है यार आम।
1: हाँ,
0: किसका नहीं होगा?
1: मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन कच्चा वाला जो होता है वो मैं बहुत खाती हूँ। कच्चा वाला
0: भी पसंद है, पर हाँ, पका हुआ आम तो।
1: और यहाँ आंध्र प्रदेश में आम का रस निचोड़ कर चटाई में फैलाया जाता है और धूप में सुखाया जाता है, जो कि नेपाल में भी किया जाता है मध्य प्रदेश में।
0: जी बिल्कुल, और हाँ इन्होंने लिखा है,
1: और ऊपर में शक्कर चीनी छिड़का जाता है, फिर एक बार आम का रस डाला है। इस प्रकार परत पर परत जमाया जाता है और सूखने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, इसी को आम रस कहा जाता है।
0: जी, और इसी को अमावट भी कहते हैं, हमारे यहाँ अमोट कहते हैं मैथिली में।
1: जी, और इन्होंने गाने की फरमाइश की है और कहा है कि मेरी फरमाइश पर ये गीत सुनने का कष्ट करे, और फिल्म का नाम है जमीन आसमान, और इन्होंने सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए हैं गाने के,
0: वो हम बाद में बता ही देंगे। फिलहाल सुनते हैं, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, और ये कौन सा गाना है हमारे श्रोताओं के मन में भी जिज्ञासा उठती होगी।
1: जी,
0: तो क्यों ना उपकरण के माध्यम से सुन ही लिया जाए। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: सन् 1984 में बनी फिल्म जमीन आसमान से गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसके गीतकार हैं अनजान और संगीतकार आर डी बर्मन। और ये है कामरान राशिद जी, डिस्ट्रिक्ट सिवान, विलेज पकरी सुल्तान, बिहार, भारत से। मुकेश भाई, रमिता सिस्टर, सीमा शर्मा को मेरा सलाम। आप लोग कैसे हैं?
1: हम लोग अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: इन्होंने कहा है कि हम अच्छे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मुकेश भाई, एक मंथ से एफएम पे प्रसारण नहीं आ रहा है, इसको सही करें। अच्छा, ये प्राविधिक त्रुटि की तरफ इशारा कर रहे हैं
1: जी।
0: तो इसी कार्यक्रम के माध्यम से जो हमें सुन रहे हैं, हमारे जो प्राविधिक हैं, तकनीकी सहयोगी हैं, जो सबको देखते हैं, वो जरूर इस पर कुछ करेंगे। और इन्हें आगे लिखा है कि कुछ लाइनें भेज रहा हूं कि इंसान को इंसान की नजर से तौलिए, इंसान को इंसान की नजर से तौलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए।
1: क्या बात है?
0: बस अगले मोड़ पे सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चलें। वाह, हमारे पास था ही क्या एक सब्र के सिवा, वो भी आज लुटा बैठे हैं इंतजार में तेरे। तेरा लहजा लाया मुझे मोहब्बत में, वरना मैं जल्दी किसी की बातों में नहीं आता। वाह, बहुत बढ़िया। उदास रहना किसे पसंद है साहब, मगर कुछ हाथ से चेहरे की हंसी छीन लेते हैं।
1: क्या बात है?
0: दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है, मतलब सवेरा भी आ ही जाएगा
1: जी।
0: हिम्मत भी चाहिए और मंजिल पर पहुंचने का यकीन भी, दरिया का सफर साहब सिर्फ नाव के सहारे नहीं होता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और के एहसास की जरूरत पड़ जाए। बहुत बढ़िया। ऐसे इंसान से लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए तुम्हें तरसना पड़े और उसे कोई फर्क भी ना पड़े।
1: क्या
0: बहुत
1: बात,
0: बढ़िया, उम्दा,
1: बहुत बढ़िया।
0: अगर मतलबी लोगों को खो देना एक हार है, तो मुझे ऐसी हार स्वीकार है। ज्यादा साफ दिल वाला इंसान भी इस दुनिया में जी नहीं सकता, क्योंकि खुद का बुरा उससे सहा नहीं जाता और किसी और का बुरा वो कर नहीं सकता। क्या बात है। मुझे लगा कि मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब पलट कर देखा तो कोई साथ ना था। थोड़े सैड सैड हैं शायरी पर,
1: सैड है लेकिन ये
0: यथार्थ। हाँ बिल्कुल। मूवी मेला का सॉन्ग मेला दिलों का आता है, सुना दें, डेडिकेटेड सभी आरजेस को। बहुत बहुत शुक्रिया हमें डेडिकेट करने के लिए, और बहुत खूबसूरत गाने की फरमाइश की है आपने कामरान राशिद जी। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: और ये गाना आपने सुना फिल्म मेला से, जो कि सन 2000 में रिलीज हुई थी। सोनू निगम, अलका याज्ञिक, रूप कुमार राठौर, शंकर महादेवन, जसविंदर नरुला, उदित नारायण और साधना सरगम की इकट्ठी आवाजों में।
1: और ये पत्र हैं राकेश कुमार कौशिक जी, सिम्बावली, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत से। ये लिखते हैं, प्रणाम।
0: नमस्कार जी,
1: नेपाल रेडियो के मधुरिमा कार्यक्रम के उद्घोषक प्रस्तुतकर्ताओं को सादर प्रणाम। नाम मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि कभी कभी प्रस्तुतकर्ता गण बदल जाते हैं। अभी तक ज्यादातर मैंने मुकेश जी, रमिता जी और सीमा जी को ही इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते सुना व देखा है। सभी की प्रस्तुति लाजवाब है। सभी अपने आप को श्रोताओं व दर्शकों से अपने आप को भली भांति जोड़ लेते हैं।
0: शुक्रिया।
1: यहाँ पर श्रोता व दर्शक शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो रेडियो सेट से कार्यक्रम सुनते हैं वे श्रोता, और जो फेसबुक के माध्यम से आपको देखते हैं वे दर्शक।
0: बड़ी बारीकी से छिलका निकाल निकाल के इन्होंने लिखा है, बिल्कुल।
1: आपने फेसबुक के माध्यम से मधुरिमा कार्यक्रम को मोबाइल पर दिखाकर रेडियो को टीवी में बदल दिया है। इसके साथ ही फेसबुक के माध्यम से हम सब आपसे मुखातिब होते हैं। फेसबुक पर पेज पर कमेंट के द्वारा अपने विचार, मन की बात व गीतों की फरमाइश आप तक सीधे पहुंचाते हैं और आप सभी को समय अनुसार पूरा करते हैं। ऐसा प्रयास आपके द्वारा किया गया है जो काबिले तारीफ है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अभी कुछ दिन पहले महान गायिका आशा भोसले जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं, जिस पर श्रद्धांजलि स्वरूप आपने कई गीत आशा भोसले जी के गाए प्रसारित किए हैं। मैंने भी बचपन से उनके द्वारा गाए गए अब तक असंख्य गीत, फिल्मी और गैर फिल्मी गीत व गजल भजन सुने हैं, गुनगुनाए हैं। लता मंगेशकर जी आशा भोसले सगी बहनें हैं, परंतु जब कभी दोनों गायिका किसी एक गीत को गाती थी तो आशा भोसले जी की कोशिश होती थी कि वे गायन में बड़ी बहन से कमतर न रह जाएं। लता मंगेशकर जी गायन के विषय पर आशा भोसले जी को कई बार कहती थी कि तुम भोसले बाद में हो, पहले मंगेशकर हो, हमेशा अच्छा ही गाओगी। आशा भोसले जी सदैव गायकी में कुछ न कुछ नया करने का सफल प्रयास करती रही हैं। उन्होंने भारतीय संगीत के साथ साथ पाश्चात्य संगीत को भी हिंदी फिल्मी गीतों में ढाला है, नयापन दिया है। वे नई पीढ़ी को समझती थी और उसके अनुरूप गायकी करती थी। उन्होंने अपने गानों को ही रिमिक्स कर झनकार बीट पर गाकर रिलीज किया कि इससे पहले अन्य गायक हमारे गायक गीतों को रिमिक्स करे या दोबारा गाकर रिलीज करे, क्यों ना हम ही पहले इस कार्य को कर ले। मैं जिस गीत की फरमाइश कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ ने इस गीत को सुना ही ना हो, परंतु इस गीत में मुझे लगा कि ये गीत आशा भोसले जी के गाए गीतों से ये कुछ अलग ही है और बताता है कि आशा भोसले समय के साथ चलती थी, समय के अनुसार गाती थी। गीत के बोल हैं, मेरे दिल का वो सहजादा, फिल्म का नाम है कभी ना कभी। धन्यवाद प्रेषक राकेश कुमार कौशिक, सिम्बावली, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत।
0: बड़ी बारीकी से इन्होंने बहुत बातें हमें बताई हैं, मुझे को साझा किया है
1: जी।
0: और बिल्कुल ये गाना गाने का जो इनका चुनाव वो भी है, ये गाना मैंने हालांकि सुना हुआ है, मेरे दिल का वो शहजादा, मेरा दिल भर मेरा प्रेमी, है ना
1: जी।
0: ये मैं कॉलेज टाइम में मैंने सुना था, ये हालांकि बहुत नया नहीं है, पर हाँ ये बहुत थोड़े से अलग वर्जन में है, वो हमारे श्रोता सुनेंगे ही। तो सुनते हैं ये गीत।

0: ये गाना आपने सुना फिल्म कभी ना कभी से, जो कि सन 1998 में रिलीज हुई थी आशा भोसले जी की आवाज़ में। इसके गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार ए आर रहमान। और किन्होंने कहा था गुनगुनाइए?
1: अफरोज जी।
0: मैं सोच रहा था क्या गाऊं, तब तक मैं मुझे एक गाना सोचा, मैं थोड़ा सा गुनाने की कोशिश करूंगा
1: जी।

0: न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। थैंक यू।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत।
0: शुक्रिया रमिता जी इस तारीफ के लिए। और ये पत्र है रुमान बेदिल जी का, किशनगंज बिहार भारत से। ये लिखते हैं, हेलो मैडम सर नमस्ते, आप दोनों को और पूरे देशवासियों को
1: नमस्कार।
0: क्या हाल चाल है?
1: बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं?
0: इन्होंने लिखा कि काफी समय से आपको सुन रहा हूँ, पर इन दिनों भारत में जनगणना कार्य को लेकर बहुत ही व्यस्त हूँ, तो आपके प्रोग्राम में जुड़ नहीं पा रहा हूँ। लगता है आप अपने पुराने चाहने वालों को भूल रहे हैं। बिल्कुल नहीं भूले हैं हम रुमान जी, बस कई बार हम जिक्र भी करते हैं, कई बार कुछ लोगों का जिक्र करना शायद भूल जाते हो तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन भूलते कभी नहीं है
1: जी।
0: पड़ोसी मुल्क से ये छोटी सी चिट्ठी आपको ये जताने के लिए है कि हम आज भी आपके कार्यक्रम के मुरीद हैं। क्या बात है,
1: क्या बात
0: है। हमें अपनी यादों में वापस बुलाइए। अरे आप हमारे दिल में हैं। इन्होंने लिखा है कि पेश है आपके तौर तमाम श्रोताओं के नाम ये प्यारी गजल, और ये बहुत खूबसूरत गजलकार भी हैं
1: जी।
0: इन्होंने लिखा है कि भूली हुई सदा हूं मुझे याद कीजिए, तुमसे कहीं मिला हूं मुझे याद कीजिए। मंजिल नहीं हूं मैं, खिज्र नहीं, राहजन नहीं, मंजिल का रास्ता हूं मुझे याद कीजिए। क्या बात है। मेरी निगाह ए शौक से हर गुल है देवता, मैं इश्क का खुदा हूं मुझे याद कीजिए।
1: क्या बात है।
0: नगमों की इब्तिदा थी कभी मेरे नाम से, बड़े कठिन शब्द हैं। नगमों की इब्तिदा थी कभी मेरे नाम से, अशकों की इंतहा हूं मुझे याद कीजिए। गुमसुम खड़ी है दोनों जहां की हकीकतें, मैं उनसे कह रहा हूं मुझे याद कीजिए। सागर किसी के हुस्न ए तगाफुल शियार की, बहकी हुई अदा हूं मुझे याद कीजिए। क्या बात है। रुमान बेदिल किशनगंज बिहार भारत से। और इन्होंने लिखा कि सॉन्ग रिक्वेस्ट तेरी याद याद याद, गुलाम अली मूवी बेवफा। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: सन् 2005 पनि फिल्म बेवफापछि गाना अपने सुना गुलाम अली की आवाज में, इसके गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।
1: और ये पत्र है अनिल ताम्रकार जी, शिवाजी चौक कटनी भारत से लिख रहे हैं। संगीत के हर स्वरूप को जिस तरीके से फिजाओं में गुलजार किया है, वाकई में तारीफ की बात है। बात उनकी होती है जिनके सहयोग के माध्यम से, जिनकी विशेषता के चलते कुछ गीत उनके नाम पर अमर हो गए। अमर गायकों की जब हम बात करते हैं तो किशोर कुमार साहब एक ऐसे अभिनेता, एक ऐसे कलाकार थे, एक ऐसे गायक थे जिनकी विद्या का आज तक कोई तोड़ नहीं है। अंततः गीतों के माध्यम से उनका अपना एक वजूद है, उनकी ही यादों से जुड़ा हुआ ये गीत ए मेरे दिल के चैन।
0: क्या बात है,
1: चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन, रजक, लालू, सोना, मोना, हन्नी, यस और उनके मम्मी पापा। कार्यक्रम में ये गीत सुनाने की कृपा करें।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: 1972 बनी फिल्म मेरे जीवन साथी से गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इसके गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन। और ये पत्र है भागवत चौबे जी का, उर्फ लाडला जी हैं ये
1: जी,
0: सागर लखनदौन,
1: लखनादौन, लाडला जी का नाम तो आज पता चला है,
0: भारी भरकम नाम है, बड़ा ही धार्मिक नाम है इनका
1: जी।
0: और इन्होंने लिखा कि देर लगेगी मगर सब सही होगा, जो तुम्हें चाहिए ना वही होगा, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो सब सही होगा।
1: क्या बात,
0: क्या पॉजिटिव विचार है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है और इंसान उसे अपना समझ लेता है। इन्होंने लिखा है कि फिल्म अगर तुम ना होते का टाइटल गीत नोट डाउन कीजिए, जी संभव हो तो सुनवा दीजिए जी।
1: जी
0: जरूर जी, मैं नोट डाउन भी किया जी और मैं सुना भी रहा हूँ जी। सागर लखनदौन, लखनादौन मध्य प्रदेश से, लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे। और चलिए आप समस्त चौबे परिवार के लिए और साथ साथ हमारे तमाम श्रोताओं के लिए ये प्यारा संगीत हम सुनाएंगे जरूर। लेकिन इस गाने को रखने से पहले और आप सबसे विदा लेने से पहले कहना चाहते हैं, दोस्तों ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है अपनी प्रतिक्रिया हमें पत्र के जरिए जरूर दें। साथ ही अपने पत्र में शेर व शायरी, कविता, गजल, जोक्स आदि जरूर शामिल करें। हमारा पता है कार्यक्रम मधुरिमा, रेडियो नेपाल, सिंह दरबार, काठमांडू। हमारा पोस्टबॉक्स नंबर 634, ईमेल पता madhurimahindi@gmail.com। साथ ही फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी बातें इस कार्यक्रम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना होगा www.facebook.com/madhurima-hindi। और इसी गाने को रखते हुए आज की मधुरिमा श्रृंखला से प्राविधिक मित्र पुष्परत्न वज्राचार्य जी के साथ मैं मुकेश कुमार मिश्र
1: और मेरा मिता यादव
0: आप सभी से इजाजत चाहते हैं। सुनते रहे रेडियो नेपाल।
1: नमस्कार, शुभ रात्रि।

गोविंद राधे 6 मास तक तनु चेतना गंवा दे। राधा गोविंद गीत। श्री राधे भन्ने नाम सुनना साथ व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी भावावेश में प्रवेश करी 6 महीनासम मूर्छा अवस्था में रहन्थे, यानी कि शरीर को होश रहँदैन थियो उनलाई। राधा नाम सित यति अगाध स्नेह थियो। प्रेम प्रदायिनी राशेश्वरी श्री राधारानी को युगल चरण में प्रणाम गर्दै कार्यक्रम अध्यात्म संदेश सुनेर बसिरहनु भएका श्रोताहरू, कार्यक्रम में यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै राधे राधे को अभिवादन। आदरणीय श्रोताहरू, अब को आधा घंटा अवधिभर यहाँहरूले रेडियोबाट नै कीर्तन एवं प्रवचन सुनेर सत्संग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम को शुभारंभ गरौं श्री राधा कृष्ण युगल नाम संकीर्तनबाट।